तो इसके लिए हम ये गीत आप तक सुनाते हैं। एक गीत और हमारे पास है जो हम आपके लिए पेश करना चाहेंगे, शायद हमारे पास ये आखिरी जो गीत रहेगा। तो हम अलविदा चाहेंगे और सैटरडे को फिर हम जुड़ जाते हैं 5 PM, तो ज़रूर हमें फ्रीक्वेंसी 96.9 पे आप सुनते रहें। और जो सिस्टर रेडियो स्टेशन से जो हमारे जो शेयर करते हैं हमारा जो ये ब्रॉडकास्ट, तो उसको भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे। तो चलो हम ये लास्ट गीत जो आपके लिए छोड़ते हैं, उसके बाद में हम फिर मिलेंगे जब जैसे हमें नेक्स्ट समय मिलता है।